हरि जस द्वारा हरि कीर्तन द्वारा बसाए जा रहे हैं। हरि नाम रूप में झुकते हैं अपना मनुख जीवन हरि पास बना रहे। सो आओ अब जितनी संगत बैठी है चेतन करके बैठे हो

0: पितर जो राम परसत है सचो ताहि पछानो।
1: छोड़ो दुनी
0: नौ प्रवाति शब्द त्याए छोड़ो दुनी परिता छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यार।

0: बस दंगे मुकरमा है जैसे छाय जैसे गी हर बसे नरंतर कटकी फोटो पाई बाहर भीतर एक
1: दान
0: एक गुर ज्ञान बताई जन नानक गुर आपा जी ने
1: जन नानक गुर आपा जी ने
0: मिटे न फल मिटाई मैं मूर्ख जान।

0: कहूं अरबी तुर्की पारसी हो, कहूं पहल भी पश्त भी सहस करती, कहूं देश बाकी
1: कहूं राज विद्या।

0: गुरु कारज दो ही वस्तुआं सेवा ते सिमर सेवा नाल मन विच निम्रता आउंदी निम्रता वाले मन विच सिमरन टिक गंगा राम तरा दिन भांडे मांजदा छे महीने अज नाले भांडे मांजी जांदा नाले अपने मन नू पिया समझांदे इधर आसा जी दार दे कीर्तन दा पहुंच पिया धन गुरु अमरदास पातशाह जी दीवान च उठे सीधे लंगर च आए गंगा राम दे कोल आके खड़ो गए गंगा राम की पिया कर रहे गंगा राम जो सिर चुके की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पिया करदा सा मूर्त तो सूरत बन के धन गुरु अमरदास पातशाह सामने खड़ोते गंगा राम हाथ तो सुहा न लिबड़े हुए सन पर अपना सिर गुरु के चरण ते रो रो के चरण हो गंगा राम की करता है पातशाह तेरे सिखा दे झूठे भांडे किन्ना चिर हो गया है छे महीने धन गुरु अमरदास पातशाह जी मुस्कुराता है गंगा राम तेरी सेवा सफल हो मंग की मंग गुरु कर दी सेवा जो भी करता है वो सफल गुरु की सेवा
1: सफल
0: सफल तन मन धन मन जो भी करता है जितनी भी करता है कोई गुरमुख माई पाई ओदा फल जरूर कर सेवा ते खा मेवा कर मजूरी ते खा चूरी गंगा रामा मंग तेरी सेवा गुरु नानक दे दर ते प्रवान पातशाह फिर जो मंगा दे दोगे हजूर कहण लगे ये गुरु नानक दा दर है हिंदू मुसलमान कुल दा संघ है जो मंगी गंगा राम हाथ जोड़ के किया पातशाह जे मेरे उत्ते तुठे हो तो मैनू अगे वर्गा बना हजूर मुस्कुराता है कह लगे गंगा राम अगे वर्गा बनाइए कि उस तू भी वड्डा बना देइए ये तेरी कृपा है

कहने लगी गंगाराम, फिर दिल्ली चला गुरु ते भरोसा रखी, गुरु नू छा समझी तू अगे नाल भी वड्डा सेठ बन गया। गंगाराम दिल्ली आ कुछ दिन फिरदा रहा, कोई कारोबार नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन मन बड़ा उदास है, अरदास कीती है तन गुरु अमरदास पातशाह, तुसी तां वचन कीता सी भी अगे नालों ही वड्डा सेठ बन जाएगा, पर मैनू तां रोटी का भी फिक्र पै गया है। तो झट कीजे पातशाह हिरदे ते आके बह गए, गंगा राम घाबरदा क्यों, जिथे वड़े वड़े सेठ कोठियां लेके बैठे हैं तू भी कोठी ले ले उथे किराए। बड़े बड़े सेठ कारोबार बिजनेस करने वाले जिथे मुनीर वहीं लेके बैठे, वो गंगा राम ने भी उथे किराए ते कोठी ले। पर कुछ और कोल होवे तो बिजनेस करे, सारा दिन बैठा रहता। पर निरंकार दी नेत एक पठान आ गए, तेरे को लख मोहर ते लाहौर दी इहने हुंडी कर ली सी। सारे सेठां कोल गया, कहन लगा भी लख मोहर दी हुंडी लाहौर दी करनी है, कर दो। सारे जितने इत्थे सेठ सन सारे ने सिर फेरे, भाई साडे कोल इतनी माया नहीं। पठान कहन लगा फिर एवें गदियां ला के बैठे, एवें अपना ठाठ बनाए, बड़े शर्मिंदे हुए। पर सोचिया असी तां शर्मिंदे हुए हैं, पर वो जिहड़ा सामने कंगाल जिहा आदमी साडे मुकाबले च कोठी लेके बैठा है, तू साडे नाल दी हुंडी कर दे। आखो तेरी भाई सारे आखो सारे नहीं आप आगा वाले हो।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को,

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

के मन लाजुम रस, अवरा पे के मन लाजुम रस। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज बचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कड़ास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

डाल देनी छे बंदिश गरीब निवाज हुसैया मेरा मात है छत्र है ताले देनी छे पावन शिव सरवर करो जी।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी एक सरदार उनका सर गुरुद्वारे से जो किस बबली बन सकिया सुरवीर जी ने हुक्म किया है अपने गुरुद्वारे इथे हाजरी परसो धन का दयोग योगी आप दी अपने दुनिया के कम मकाज में त्याग के गुरु महाराज जी चरण शरण च बैठ के अमृत में हरी जस हरि कीर्तन हरी सरदार ते भावना ना सरवण करे महाराज बख्श कर सारा की हाजरी दर के लाऊ सारे दे सिरां दे उत्ते बख्श बरहत रखा ते नाम दान बैठे हो छोली करो अरदास कोई सुना फैलन जाए चपो सारे।

0: राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया आखन लगा, रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा, हुण विखा अपना बगीचा। ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे ओ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटा। ऐ मनुख तू भी कदी छाती।
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लाइव गुरबानी कीर्तन 24 आवर्स अ डे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
0: तू भी कदी छाती।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श

नाम बिना नर्क के ही न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कमदा नहीं है, किसे कमदा नहीं, किसे लेखेज नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घरबार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है। और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

कि नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने, इस नू खराब करते जाने। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोद, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं। साढ़े जेड़े ख्याल हैं वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत में बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असि अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन के उत्ते तस्वीर चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असि अलग चेयर के उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचार के उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्होंने अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनैक्टेड यूअर सैल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगां वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप। अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधते जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होंदे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असि उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है। फिर पढ़दे क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जाना, बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जाना। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलाड़े होए बंदूकां लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वो भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हां ने हाथ च फड़ाते सी, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े। असीं डह सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हांजी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे सार देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्होंने नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर, जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, त्रिकच्छ तुरंग स्पच्छ बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वते तसो दिवाले पावेंगे, पर पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक पुट, निक्षे जिम केर पर्वते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा होंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, जकारे छड़ते पंज पै पंज के पांच सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे होने। जदों उन्हें वेख्या दुष्टा भाई ये आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोगे गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे वाले ऐ वेखन वाले भजन, तो फिर एक उत्थे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो, असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हाँ, ना असी बुढ़े मारते हाँ, ना असी बच्चे मारते हाँ, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असं इधर जाने जे आगे ने उन्हों छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे। है जी 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने बढ़िया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह।

जिस मार्ग से एक दिन तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने पौधा पदर महाराज तंता इतने डंके जी रह गए, कारा भी इतने, मकान भी इतने, जमीना भी इतने, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना, केड़ी वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो।

अपने ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो सगल।